ओम श्री नरेन भगवान की जय। श्री देवपुरी महादेव की जय। श्री विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमात्मा स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।

श्रीदीप नारायण भगवान की जय। देवेश्वर महादेव की जय। श्रीमद कृष्ण भगवान की जय। विश्व गुरु मंदिर श्री स्वामी जी गुरुदेव की जय। श्री अर्कपुरी जी।

0: श्री दीपनर भगवान की जय।
1: श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री देव पुरुष महादेव की जय। नरम समरथ स्वामी मधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री अवतारपुरी जी महाराज की जय।

श्रीदीपनारायण भगवान की जय। श्रीदीपनारायण भगवान की जय। स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव।

नानक की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। अलकपुरी जी महादेव, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान, दीप नारायण भगवान, सनातन धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति।

First of all, before I start my welcome address, I would like to take the permission from Honorable Swamiji and Dharmadhikari ji that I would like to speak in Hindi, if you kindly permit me. Thank you, sir. सबसे पहले मैं मंच पे आसीन भारत की वो महान हस्ती परम पूजनीय स्वामी जी का एक बार सभी तालियां बजाकर हार्दिक अभिनंदन कीजिए. आज स्वामी जी वो महान हस्ती हैं. हमारा सौभाग्य है कि इस तीर्थ स्थान पर हमें उनके दर्शन करने का मौका मिला है और आप सबकी तरफ से धर्माधिकारी परम आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इस तीर्थ स्थान पर हमें बुलाकर इतना हम लोग इनका जिंदगी भर आसान नहीं भूल सकते कि इन्होंने जहां पे लोग लाखों रुपया खर्च करके दर्शन करने में लाइनों में खड़े होते हैं, वहां पर धर्माधिकारी जी ने हमारे इन बच्चों के लिए, हमारे ऑफिशियल के लिए मात्र यहां पर हमें दर्शन नहीं करवाए, इतनी सुंदर अंतर्राष्ट्रीय यहां पर प्रतियोगिता, सेमिनार, वर्कशॉप, क्लिनिक का भी धर्माधिकारी जी ने बहुत सुंदर ढंग से इतने डिसिप्लिन के साथ यहां पे आयोजन किया. हम आप सब बच्चों की तरफ से, हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए यहां प्रतिभागी, उन सब की तरफ से 8-10 प्रदेशों से, देशों से यहां पर जो आज पार्टिसिपेंट्स, हमारे डेलीगेट्स आए हैं, उन सब की तरफ से हम धर्माधिकारी के जी के चरणों में एक बार पुनः प्रणाम करना चाहेंगे और आशा करना चाहेंगे कि वो अपना आशीर्वाद इसी तरह हम सब पर बनाए रखें, ताकि ये धर्मस्थल, जिसका नाम ही ऐसा है धर्मस्थल, और यहां पर आकर हर कोई आदमी, आप देख रहे हो पिछले 3 दिनों से हम यहां हैं कि कैसे लाइनें लगी हुई हैं, कैसे लोग दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन हमें आपने स्वयं यहां बुलाया. और बुलाया ही नहीं, हमारे ठहरने की इतनी स्वामी जी इन्होंने व्यवस्था की है कि 5-स्टार होटल्स में भी ऐसी व्यवस्थाएं अवेलेबल नहीं होती. खाने के लिए ऐसा सात्विक भोजन और उसका इंतजाम. मैं अग्रवाल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं. हमारी बनिया कम्युनिटी में शादी के समय जैसा इंतजाम होता है, वो इंतजाम परम आदरणीय स्वामी जी ने, इन्होंने, हेगड़े जी ने, यहां पर धर्माधिकारी जी ने हमारे बच्चों के लिए खाने की जो व्यवस्था की है, हम सर भूल नहीं सकते. ऐसा स्वास्तिक भोजन, वास्तव में योग की दिशा पर चलकर जो खाया जाता है, वो भोजन इन्होंने हमारे बच्चों के लिए, हमारे डेलीगेट्स के लिए. और कल रात हमें पता लगा, हर पार्टिसिपेंट को इन्होंने ट्रैक सूट बांट दिए. कब ये क्या फैसला करते हैं, ये कोई धर्माधिकारी ही कर सकता है, हमारे जैसा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता. और यहां पर आज से 5 वर्ष पूर्व भी हमें आने का मौका मिला था, तब भी यहां पर जो प्रतियोगिता इन्होंने कराई थी, एक इट वॉज ए माइल स्टोन इन द फील्ड ऑफ नेशनल योगा चैंपियनशिप. सर, हम 1974 से योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया सेटअप की है, लेकिन ऐसा कार्यक्रम हम कभी नहीं करवा पाए. जो धर्माधिकारी जी के आशीर्वाद से यहां पर एक भी बच्चा हमारा ऐसा नहीं है, अगर कोई बीमार हुआ है उसके लिए तुरंत डॉक्टर अवेलेबल हैं. यहां तक यहां से बेंगलोर बाई एयर जो हमारे पार्टिसिपेंट आए हैं, अपनी एसी बसेस इंतजाम करके हमारे पार्टिसिपेंट को मैंगलोर से उनको यहां लाया गया. रात को अगर कोई लेट हो गया तो उनका मैंगलोर में होटलों में ठहरने की व्यवस्था की गई है. मैं अपने तमाम पार्टिसिपेंट ऑफिशियल की तरफ से, आपकी जो एक मार्वलस टीम है, इतनी वंडरफुल, आपके डेडिकेटेड
आपके हमने खाना जहां खाया है, इतनी स्मार्ट गर्ल्स जिन्होंने इतने प्यार से हमारे सभी डेलीगेट्स को खाना खिला रहे हैं, हम भूल नहीं सकते। घर में जैसे माँ अपने बच्चों को खाना खिलाती है, उस तरह आपके ये बच्चे हमें खाना खिला रहे थे। हमें उनसे खाना खाते समय अपनी माँ याद आ रही थी कि मैंने उनको स्पेशली कहा है कि आप आज एक माता के रूप में हमारे सामने अपने बच्चों को खाना खिला रहे हो। तो मैं आप सबकी तरफ से यहाँ के इंतजाम के बारे में हमारे पास कोई शब्द नहीं है, डिक्शनरी ढूंढा चाहे इंग्लिश हिंदी किसी लैंग्वेज में भी ऐसा कोई शब्द नहीं बना जो हम बोलकर आपके चरणों में प्रणाम कर सकें। मैं एक बार पुनः, और आप 50 वर्षों से धर्माधिकारी के पद पर हैं, हम अब आपकी गोल्डन जुबली है, हम उसके लिए भी आपके चरणों में प्रणाम करते हैं और सभी एक बार पुनः तालियां बजाकर धर्माधिकारी जी के 50 ईयर गोल्डन जुबली के उपलक्ष पर भी हम इनको अपना उनके चरणों में प्रणाम। ये जो सिल्वर जुबली फंक्शन यहां आयोजित हो रहा है, सर हमने केरला में फर्स्ट फेडरेशन कप वहां आयोजित था तो इनके मिस्टर शशिकांत जैन इनके बिहाफ से मेरे से बात करने लगे कि अग्रवाल जी हम चाहते हैं एक सिल्वर जुबली फंक्शन वहां हो। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। भूखे को क्या चाहिए? खाना। अब हमारे घर में आकर आपने अपना दूत भेजा जिसने हमें कहा कि हमने फंक्शन कराना है, हमारा कोई पैसा खर्च नहीं, सारी व्यवस्था आपकी, खाना आपका, ठहरना आपका, और हम यहां से शान से आकर इस फंक्शन को एंजॉय कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य था जब शशिकांत जैन ने आपके माध्यम से हमें आके ये अनुरोध किया, हमें इतनी खुशी हुई कि ये फंक्शन, और तब से बच्चे इंतजार कर रहे थे कब वो दिन आएगा जब हम धर्मस्थल में पहुंचकर यहां पर आएंगे। आपने दर्शन के लिए अलग से VVIP हमारे बच्चों के लिए

सभी पार्टिसिपेंट का। सर यहां जो बच्चे हैं ये सिलेक्टेड बच्चे हैं जिनको हमने निमंत्रण दिया है, इनके भाव से हम आपको योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया के लाइफ पैटर्न बनाना चाहते हैं, ताकि आपके आशीर्वाद से हमारी योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया और आगे बढ़े। भारत के प्रधानमंत्री परम आदरणीय पूजनीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को इंटरनेशनल योगा डे के नाते सारे विश्व में प्रचार किया। हम आपके आशीर्वाद से चाहेंगे कि ये योग जो योगा फेडरेशन इंडिया वर्ष 1974 से सारे देश में काम कर रही है, एशियन योगा फेडरेशन 2010 से हम एशियन कंट्रीज में जाके ये इसका संदेश बन जाते हैं। मैं वर्ल्ड योगा बॉडी का भी सेक्रेटरी जनरल हूं और हमने आपके आशीर्वाद से मुझे कम से कम 80 बार विदेशों में जाने का मौका मिला है। लेकिन जिस दिन हमारे पैड पे धर्माधिकारी जी का नाम आ जाएगा, मुझे विश्वास है कि विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं बचेगा जो योग के लिए आगे बढ़कर नहीं आएगा। हम आपके माध्यम से सारे विश्व में जाना चाहते हैं, भारत की इस प्राचीन संस्कृति, भारत की ये इंडिजिनस स्पोर्ट्स और आगे बढ़ाना चाहते हैं। मोदी जी ने एक बार, मैं आयुष मंत्री हमारे नायक साहब भी हमारे बीच में बैठे हैं, सर मेरा आपको भी प्रणाम है और सबकी तरफ से, क्योंकि आप सरकार में एक ऐसा पिलर हो, आपकी जब कलम चलेगी तो सारे देश में योग का प्रचार हो जाएगा। मेरा आपसे भी अनुरोध है कि आप भी एक पैटर्न के नाते हमारे संघ से, योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया पिछले 43 ईयर से देश के कोने कोने में योग का प्रचार कर रहे हैं बिना किसी गवर्नमेंट की हेल्प से। हमने आज तक किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, धर्माधिकारी जैसे सज्जन पुरुष महान हस्तियां हमें मिलती हैं जो ये व्यवस्थाएं कराते हैं। हमने कभी गवर्नमेंट में कोई ग्रांट नहीं ली, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया। उसके बगैर सारे देश में 43 वर्षों से हम योग का प्रचार कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आयुष मंत्रालय आपके पास है, इस मंत्रालय के आप मालिक हैं, आपके आशीर्वाद से आप भी हमारे साथ इस फेडरेशन के पैटर्न के नाते साथ जुड़िए और हम देश का कोई शहर नहीं छोड़ेंगे जहां पे योग नहीं होगा। भारत की संस्कृति, एक बार सभी जोर से तालियां बजाकर श्रीपद नायक जी के भी स्वागत में आप प्रणाम कीजिए और इनको विश्वास दिलाइए कि देश के हर कोने में योग होगा। भारत की संस्कृति, भारत की प्राचीन संस्कृति, जो महान स्वामी जी जैसे इन महान पूजनीय स्वामी जी के आशीर्वाद से हम सारे देश में, विदेशों में, हर जगह हमारी योग संस्कृति जाएगी। जो हमारे डेलीगेट्स 10 देशों से यहां आए हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने हमारे निमंत्रण पर यहां आए हैं। हिंदुस्तान के कोनों कोने से जो यहां पर हमारे प्रतिभागी आए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, सभी ऑफिशियल का स्वागत करते हैं, योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया, एशियन योगा फेडरेशन के तमाम पदाधिकारियों का हम स्वागत करते हैं और विशेषकर हमारे प्रेस बंधु। सर अगर आपकी कलम नहीं चलेगी, आपकी कलम नहीं चलेगी तो हमारा कोई काम नहीं चलेगा। तो मेरे प्रेस बंधुओं से प्रार्थना है, आप 4 दिन यहीं पर रहिए, आप देखिए ये बच्चे आपके सम्मुख योग, हमने सिर्फ आसन नहीं करते, योग आसन है, आर्टिस्टिक योगा है, आर्टिस्टिक पेयर योगा है, रिदमिक योगा है, फ्री फ्लो योगा डांस जो आजकल आप टीवी पे शो देखते हो डांस इंडिया में, ऐसे कार्यक्रम यहां आपको दिखाएंगे और आपकी लेखनी के माध्यम से, आपके प्रेस बंधुओं के माध्यम से सारे देश में ये मैसेज आएगा। इन शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं परम पूजनीय स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, धर्माधिकारी जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और मंच पर हाजिर तमाम उच्च पदाधिकारियों से, तमाम महानुभाव से, योग प्रेमियों को भी मैं प्रणाम करता हूं और ये बच्चे जो आए हैं, विशेषकर इनके पेरेंट्स को, इन बच्चों को मेरा प्रणाम। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता जी, वंदे वंदे। प्रणाम सर।

0: Thank you very much, sir. His Holiness Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhans Sri Swami Maheshwaranda Ji,
1: हम स्वामी जी को योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया और एशियन बॉडी की तरफ से एक यादगार प्रदान करना चाहेंगे।

अनंत ब्राह्मण्ड के रचयिता, सृष्टि के पालन करता, घट घट में रहने वाले उस परब्रह्म परमात्मा को शत शत नमन। आराध्य भगवान शिव सतगुरु को दंडवत साक्षात दंडवत प्रणाम। ब्लेसेड सेल्फ डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, आई फील माई सेल्फ इन कंप्लीटली अंदर अदर वर्ल्ड, स्वर्गलोका, बियॉन्ड द स्वर्गलोका, शांतिवन। हिज होलीनेस डॉक्टर डी वीरेंद्र हाटगे साहब, आई फील सो divine that he remembered me. He is a divine soul. The whole family, it is a divine incarnation. As our dear Sri Agarwal Sahib told, you see, even there are some people who cannot feed their own family, but he is the giver. Kidi ko kan, hati ko man, dene wala wohi hota hai, jo ki parampita paramatma ka hi shaputra hai. Respected Honorable Ayush Minister Sri Sripad Yusu Naik Sahib, I think he got that quality and some spirituality of the Patanjali, Rishi Patanjali, that he came back and he got in his hands to spread the yoga, and yoga in the whole world. It is the first one who is a minister of the yoga, and I thank you. All dear sisters and brothers, is manch pe virajman, दूर दूर से आए हुए सभी सज्जन, I feel myself that I have a new vision in my work of the yoga. अनंत ब्राह्मण्ड शून्यकाश, हाउ आई अंडरस्टैंड द योगा, द योगा इन डेली लाइफ एवरी डे प्रैक्टिसिंग, द भगवान सदाशिव अनंत ब्राह्मण शून्यकाश, there is nothing

0: सोहम सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ओम सोहम सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ओम श्री अलकपुरी जी महादेवाय की जय हो। अलकपुरी जी महादेव की, देवादिदेव देवपुरीषा महादेव की, हरि गुरुदेव भगवान दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। ओम शांति शांति शांति।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम हंस स्वामी महेश्वरानंद स्वामी जी गुरुदेव की जय।
0: हे वेयर द एयर इज गोइंग, एयर इज गोइंग फ्रॉम दिस साइड। थैंक यू। यू कैन पुट इन नियर महाप्रभु जी हियर मे बी यू हियर। ओह महाप्रभु जी देयर for you very good, okay? Yeah.

0: मन की देवाधिदेव देव पुरुषा महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान अलकपुरी जी महादेव जय। ओम नमो श्री प्रभु दीप नारायणम। हम सब दास प्रभु, हम मीन्स वी ऑल,
1: हम znamenami všichni,
0: हम सब वी ऑल,
1: हम सब।

शिशुतवे श्वरमदेव की जय। इंदुराम समरथ सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की जय। विश्वगुरु महामदलेश्वर स्वामी महेश्वर नंदी योगी राज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। माता पित गुरुदेव की जय। गजानंद मूर्ति कृपा करो महाराज सत्संग में।